0: सर नमस्ते, KZMU मोआब कम्युनिटी रेडियो से बोल रही हूँ दीपाली परमार। 90.1 और 106.7 FM और मैं जब अपने घर होती हूँ पुणे में भारत में, मैं www.kzmu.org ऑनलाइन यही रेडियो सुन सकती हूँ और आप मुझे ये रेडियो पे सुनिए, शुक्रिया।
1: And on 90.7 FM in San Juan County, Utah.